प्रेम समलो श्री आदि शक्ति देवी माता की जय. वेरी ब्यूटीफुली डन बाय अंकल रोहित. विद दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, सब करा हो जाए पूर्ण होती के लिए और आरती के लिए. लेट अस ऑल स्टैंड दिस टेक पार्ट इन आवर कंक्लूडिंग पूर्ण होती फॉलोड बाय आवर कंक्लूडिंग आरती.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: देवों में प्रथम पूज्य देव समूह के नायक प्रथम पति एक दंत लंबोदर विघ्ननाशक शिव पुत्र श्री वरद मूर्ति गणपति कर्ता हरता धरता ही नहीं सब रूपों में विराजमान ब्रह्म है। प्रातः प्रथम स्मरणीय भगवान गणपति इंद्रादि देवेश्वरों के समूहों से भी वंदनीय अनाथों के बंधु हैं। इनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं। भगवान गणपति अपने उपासकों के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। सांस्कारिक सत्कर्मों की ओर सहज प्रेरित करने वाले भगवान गजानन के वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र ध्यान स्तोत्र एवं गायत्री का पाठ करने से निरंतर सत्कर्मों में तल्लीनता सजगता एवं एकाग्रता प्राप्त होती है।

सहज सुमंगल नव ग्रहों में एक मंगल की उपस्थिति एवं कृपा प्राणियों की इह लौकिक जीवन में धन धान्य की संपन्नता प्रदान करती है। सांसारिक कर्मों में व्याप्त दुर्गुणों से परे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले मंगल की उपासना अत्यंत फलदायी है। मनुष्य के जीवन के 7 वर्षों में मंगल की स्पष्ट उपस्थिति रहती है। इन क्षणों में मंगल के लाभकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए वेद पुराण एवं उपनिषदों में वर्णित मंत्र ध्यान व स्तोत्र का पाठ एवं जाप मंगलकारी है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अपने उपासक के लिए नामानुकूल बहु फलदायक हैं। मंगल का नित्य ध्यान करने वाले श्रद्धालु संपूर्ण जीवन ऋण से मुक्त सुख शांति के सेवक रहते हैं।

जिनकी दिव्य कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के सदृश है, जो अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारित रखते हैं, भूदेवी और श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्व की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनके वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित हैं, जो अपने गले में चमकीली कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और हार, केयूर वलय तथा अंगद आदि दिव्याभूषण जिनके श्री अंगों में सजकर धन्य हो रहे हैं, उन पीतांबरधारी नारायण का चिंतन करना चाहिए। सांस्कारिक ज्ञान की श्री विद्धि करने वाले भगवान श्री नारायण का वेदोक्त, पुराणोक्त एवं उपनिषद वर्णित मंत्र, ध्यान, स्तोत्र का पाठ एवं श्रवण परम सत्ता में ध्यान केंद्रित कर मोक्ष की दिशा प्रदान करता है।